समिति 2083 साल आज श्रावण महीना को 20 गते आज बुधवार तदनुसार ईस्वी सन 2026 आज अगस्त 5 तारीख नेपाल सम्वत 1146 दिन लगा रौद्र नाम संवत्सर रहेको सश्री सूर्य दक्ष

0: गाव न गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता। मैं भी नहीं गया। आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
2: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

0: देखो ये बकवास बंद करो, गाने में वक्त जाया मत करो, मेरे साथ चलो, पेपर साइन करने हैं, बाद में जो झक मारनी हो मारो।
1: अरे जान, आप मुझे सपने भी सताने लगा है।